चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है कट कट के पट पट की जान है जबुद करख करा करतारा प्रजा धरत देह अपारा जब आ करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बद

केवद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कई पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप सुजंपव अवरच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेते उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे पुरख जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक वार ते आए है ताके काल निकट ने आए है रच्छा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रय तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तन कमे हर हो।

करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शक्ल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शय करता श्री अस्तुज जब भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला।

आपको मैं बताऊंगी क्या हुआ, अजब हुआ, लेकिन आम है आजकल, आजकल ये आम हो रहा है कि सच के ऊपर आप बेड़ियां लगा दें, पर्दा डाल दें, ये आपके लिए बहुत मुमकिन है। खैर, आज एक सवाल भी है, खाने की चीज़ पर सवाल है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है। जैसे कि एक मुल्क में काफ़ी विरोध हो रहा है, विरोध पर पर्दा डाला जा रहा है, यानी खबरें नहीं आ रही बाहर इस विरोध की, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कहां क्या हो रहा है। लेकिन पहले आपकी कदर करते हैं

लेकिन अगर जहां पा लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे मैंने आपको बताना है कि पिकनिक पे कब जाना है। पिकनिक पे जमीन ऐसे वैसे ही तो नहीं ना निकल जाते, दो इन्होंने कंडीशंस बनाए, दो शराइत हैं इनका होना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप पिकनिक पे जाएं। वो बात थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताती हूँ। लेकिन फिलहाल किसका मैसेज सबसे पहले आया है? ओके, अमीर अली राणा, परिंज विशिंग यू एंड ऑल द लिसनर्स गुड मॉर्निंग। मोहब्बत ना होती तो कहते हैं गजल कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता। बाकी ये सिर्फ शोरा का यानी कवियों का काम है और कहाँ। प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, ओके, प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को, अच्छा लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। वाकई वहाँ लाश

0: ना दफन, तो उसको ताजमहल कौन कहता। बहुत अच्छे अमीर अली राना। और साथ आए हैं भरत गंगाराम, लंदन में हैं, बहुत खुश हैं, कहते हैं वंदनीय परवीन जी, हम सुन रहे हैं आपका प्रोग्राम। ग्रेट, क्योंकि ये जब प्रोग्राम सुनते हैं तो मिठाइयाँ, वो कहते हैं ज़्यादा बनती हैं, पैदावार प्रोडक्शन बढ़ती है और ज़्यादा टेस्टी लज्जतदार होती हैं मिठाइयाँ। ओके भरत गंगाराम। और शैलेश और शीला शाह, प्रवीण जी अच्छे गाने आप शुरुआत में ही सुनाना शुरू कर देते, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वो गाने के बारे में भी सुन लीजिएगा।
1: प्रवीण जी, तुम्हें पाके हमने, ये गाना फिल्म घेरा दाग का है, 1963 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है और जिसकी धुन रवि ने बनाई है। ये गाना राजेंद्र कुमार और माला श्याम पे फिल्माया गया है। गाना अच्छा लगा सुनाने के लिए, आपका शुक्रिया
0: जी। मुझे चाहिए थी ये इन्फॉर्मेशन, गहरा दाग की, अच्छा गाना है। और गहरा दाग के बाद कौन आए हैं, मिस्टर एमएल विश्वकर्मा, कहते हैं ओन कोट ऑफ द डे, ओनली ट्रस्ट समवन हु कैन सी दीज थ्री थिंग्स इन यू, कहते हैं उसी पर भरोसा करें जिनको ये तीन चीज़ें आप में दिखती हैं। क्या द सोरो बिहाइंड योर स्माइल, आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आप परेशान हैं, इनको पता चल जाता है। द लव बिहाइंड योर एंगर, ये क्या बात हुई, कहते हैं आप जब गुस्सा होते हैं ना उसके पीछे प्यार छुपा होता है। सर मैं तो नहीं मानती, लेकिन जो मानते हैं अच्छी बात। एंड द रीज़न बिहाइंड योर साइलेंस, कि आप क्यों खामोश हैं, वो ये लोग जानते हैं, उन पर भरोसा कीजिएगा। बहुत खूब, मिस्टर एमएल विश्वकर्मा इन इंडिया। तो समझ, मैं आपको बता रही थी कि दो कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है, दो शराइत होनी चाहिए कि आप पिकनिक पर जाएं। ये दोनों मुझे बता दीजिएगा, पहले गाना सुने।
2: जब दिन हसी
3: दिल हो जवान,
2: क्यों ना मनाए पिकनिक

और क्या मूड में थे मोहम्मद रफी साहब. रंजन विनोद इन लंदन कहती हैं कि तमाम दोस्तों को, फ्रेंड्स को और जो फैमिली है, परिवार बेमिसाल अंदाज का, गुड मॉर्निंग. और एक साथ यहाँ पर भरत गंगाराम, क्या बात है, क्या बनाया हुआ है. कहते हैं कि आपने सच कहा है, हमारा दिल हमेशा खुश रहता है. जब बेमिसाल अंदाज सुनते हैं ना, तो देखिए ये ढोकला, अच्छा ढोकला बनाया हुआ, कितनी तहें हैं. मेरे ख्याल है उफ अल्लाह, ये तो 20 से ज़्यादा हैं तह, एक साथ ही मेरे ख्याल है ये ढोकला बन जाता है. काश ये मशीन हमारे पास होती, एक आधा तो बना ही लेते ना. भरत बहुत लकी हैं आप. अब शोभना और दिनेश भी हैं, कहते द केमिस्ट्री बिटवीन द होस्ट एंड द लिसनर्स इज सो गुड. देखा ना, जैसे कि भरत गंगाराम अपने ट्रेड सीक्रेट्स मेरे साथ शेयर कर रहे थे. ट्रेड सीक्रेट है कि बेमिसाल ऑन हो तभी खाना अच्छा पकेगा. और द केमिस्ट्री बिटवीन द लिसनर्स इज सो गुड दैट इट लिफ्ट्स आवर स्पिरिट्स टू न्यू हाइट्स. कहते हम ऐसे लगता है जैसे परों के साथ उड़ रहे हो. इट्स अ कंप्लीट प्रोग्राम. बहुत शुक्रिया आपका दिनेश और शोभना. मंजुला विश्वकर्मा की आवाज़ थोड़ी देर के बाद. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको गम सताता है ना, एक तो पिकनिक की सलाह दी थी आपको और अब गम, जब भी आप परेशान हों तो पता है क्या करना है, सुनिए ये गाना.

0: तो छेड़ सखी सरगम, अगर गम आपको सताता है तो सरगम का सहारा लीजिएगा. हाउ ट्रू. अब देखते हैं कि कृष्ण सरोवर ने कॉल किया लंदन से, कहते हैं कि आपको पता है भारत की करेंसी कितनी प्रिंट होती है, 34 लाख करोड़, और ये सारी भारत में ही प्रिंट होती है. बहुत अच्छे. और कहते हैं कि सबसे बड़ा बड़ी कीमत का जो नोट है वो 500 का है. 1000 का समय निकाल दिया गया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ इस पर बड़ी बहस है, इस पर बहुत लंबी बहस है कि इसका फ़ायदा क्या हुआ था. जब दिल को सताए गम, मंजुला विश्वकर्मा सिंगर लता और ईयर 1950. क्या बात है.
1: सबको नमस्कार परवीन जी. थोड़ी अकड़ लेना भी जरूरी है जिंदगी में, वरना जिस तार में करंट नहीं होता उस पर कपड़े सुखाने लगते हैं लोग. शुभ प्रभात.
0: जिसमें करंट नहीं होता उसमें कपड़े सुखाने लग पड़ते हैं, वो बिजली की तार होती है. मंजुला विश्वकर्मा, टू गुड. परवीन जी, आई हैव बीन सो बिजी वॉलंटियरिंग फॉर द फूड बैंक. जी समिन, आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में होते हैं और यूएस में भी फूड बैंक्स होते हैं, हेल्पिंग सम फैमिलीज हू कम टू कलेक्ट ड्राई स्टफ राइस शुगर एक्सेट्रा. इट टेक्स मोस्ट ऑफ माई टाइम बट टूडे आई टुक अ चांस टू सेंड यू दिस मैसेज. अमीना मैनचेस्टर, जब भी वक्त मिले आप अपनी शायरी भेज सकते हैं, बड़ी अच्छी होती है, लिसनर्स इंतज़ार भी करते हैं अमीना. बट थैंक्स फॉर टेलिंग अस वाई यू कुडंट. हैप्पी मिड वीक टू ऑल द लिसनर्स. रूपल, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. ओके, ये गाना रूपल मैंने ना रेस्ट पे रखा हुआ था, लेकिन आपके कहने पर इसको पुल आउट करना पड़ेगा. ठीक है. चिराग पटेल करटीना से बहुत खुश हैं. सना काना, आपने गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दिया है. और मिस्टर विश्वकर्मा, चलेंगे तीर जब दिल पर, ये फिल्म कोहिनूर का 1960, मोहम्मद रफ़ी एंड लता, लेकिन फिल्म में थे मीना कुमारी और दिलीप कुमार. कमाल है एमएल विश्वकर्मा, सो काइंड ऑफ यू, आप करते हैं मेहनत. कोकिला यूके में है और कह परवीन जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द लिसनर्स, थैंक्स फॉर प्लेइंग सुपर गाना, दिल खुश हो जाता है, इतने अच्छे गाने. हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, जब दिल को सताए गम तू छेड़ सखी सरगम. सरगम और गम. चंद्रिका वसंत गोसाई, बहुत शुक्रिया. रंजन विनोद, वाओ मेरा फेवरेट सखी सरगम, फेवरेट गाना है, क्या बात है. चलिए फिर, अगर गाना फेवरेट है तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए.
2: प्रवीण जी, चलेंगे तिल दिल पे जब तक, ये गाना फिल्म कोहिनूर का है, 1960 की मूवी है, जिसको मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने गाया है और जिसको शकील बदेवी ने लिखा है और जिसकी धुन नौशाद अली ने बनाई है. ये गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पे फिल्माया गया है. गायन अच्छा लगा, सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. प्रवीण जी, जब दिल को सताए गम, ये गाना फिल्म सरगम का है, 1950 की मूवी है, जिसको लता मंगेशकर ने गाया है और जिसकी धुन श्री रामचंद्र ने बनाई है. ये मूवी में राज कपूर और रेहाना ने काम किया है. ये गाना रेहाना पे फिल्माया गया है. गाना अच्छा लगा, पुराना गाना सुनाने के लिए आपका शुक्रिया.
0: और आगे है टुडे इन हिस्ट्री, लेकिन उससे पहले एक गाना आपको सुनाना है. समझ, ये कैसी थी टीम, हेमंत कुमार के साथ थी सुमन कल्याणपुर.

0: क्या डुअट था। और अब सामने एक सवाल आ रहा है, एक्चुअली यासर ने टुडे इन हिस्ट्री कुछ लिखा है जो आपसे पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा आज 24 जून है, आज के दिन क्या हुआ था 2002 में, अफ्रीकाज वर्स्ट एवर डिजास्टर, ट्रेन डिजास्टर। कहते हैं कि आज के दिन सन 2002 में अफ्रीका का सबसे बदतरीन, जो बदतरीन रेल हादसा था वो हुआ था, जिसमें 281 पीपल पेरिश्ड। तो समीन मुझे बताएं कहाँ हुआ था, अफ्रीका के कौन से देश में ये हुआ था, 281 मुसाफिर अपनी जानों से गए थे। 07011061106 पर सामने जवाब दीजिएगा कि कौन सा देश था। कोशिश करें जल्दी जल्दी, फिर मैं आपको बताती हूँ बाकी।
1: No one plays more of the beats you dance to but East FM.
2: East FM,
1: Kenya's premier
2: Asian mix.
1: Asian mix. All the great songs that make your day.

और कल्पना कहती है अभी भी आप करेंसी नोट की बात कर रहे हैं, देखो मेरे साथ क्या हुआ, पूरा बंडल था नोटों का, मुझे लगता है ये बहुत क्रिस्प नोट्स थे। कल्पना आपको कहाँ से ये नए नए नोट्स मिल गए? कहते मेरा हाथ ही कट गया, मेरी उंगली कट गई है। यस, ये एक्चुअली ऐसा होता है ना, ये कागज़ समझ, ये काट सकता है आपको, ये बड़ा मजबूत होता है। इसकी कीमत क्या है, मजबूती के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। अब जो मैंने कहा कि यासर ने कहा टुडे इन हिस्ट्री 24th of June 2002 अफ्रीकाज वर्स्ट एवर ट्रेन डिजास्टर, जिसमें 281 लोग 281 लोग चल बसे, तो कृष्ण सरोय ने कहा कि ये केन्या में हुआ था, केन्या में जो हादसा हुआ था उसमें 281 लोग नहीं मरे थे। और सोनल मोदा ने करेक्ट आंसर बिल्कुल दे दिया है, वेल डन। और साथ ही जैनुल मोहम्मद, सबसे पहले जैनुल मोहम्मद ने पूरी जानकारी भेज दी है, वो मैं आपको पढ़कर भी सुनाऊंगी, और यासर ने जो लिखा है वो भी। वासुदेव हिरानी, वेल डन, वासुदेव ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, जबीन हिरानी। आपने कहा अगर सुकून चाहिए तो हर बात जानने की जिद मत करो, क्योंकि सब कुछ जानने की कोशिश अक्सर मेंटल पीस छीन लेता है। बिल्कुल, हर कुछ आपने सब कुछ जानना है। और आपने कहा है द आंसर इज सोमालिया, नहीं, सोमालिया नहीं है, केन्या नहीं है। टीना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी, विद ऑल द डिटेल्स। रितु गुप्ता, आप भी बिल्कुल करेक्ट हैं। दीपक वटगामा, आपने भी मूल का नाम ठीक दिया है। रंजन विनोद, करेक्ट आंसर। मंजुला विश्वकर्मा, बिल्कुल सही जवाब आपका। और आशा भिमानी, सही जवाब, करेक्ट। रेखा, रेखा ने जो लिखा है वो बाद में। बॉबी ओस्मान, आपने गुड मॉर्निंग कहा है। अमीना की बात, तुम्हें याद होगा हम कभी हम मिले थे, टच्ड माय हार्ट, आई हर्ड इट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ब्रॉट बैक सो मैनी मेमोरीज। अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, बहुत ही, और काफ़ी अरसे के बाद मैंने सुनाया। और ये जो है डिजास्टर, खमन, यू डोंट नीड मशीन, एवरी गुजराती नोज हाउ टू मेक, इवन यू कैन मेक। ये जो है समझ में, हल डोकला कहती हैं कि इतना आसान है, हर कोई जानता है, सिंपल, यू डोंट नीड सो मैनी इन्ग्रीडियंट्स। लेकिन मैंने देखा है शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मैंने एक बार कोशिश भी की, वो तो फूला ही नहीं, वो तो एक भारी सा, भारी सी रोटी बन गई थी। खैर, मुझे कहा गया है कि ये बहुत एक्सपर्टीज का काम है। रसिला, इट टुक प्लेस, बिल्कुल सही जवाब आपका। और एक और आंसर आया है, ये है करेक्ट। और आप कौन हैं, कल्पना है शायद, जी हाँ, कल्पना का भी आंसर करेक्ट है। रसिला, राइट, अच्छा मुझे लगता है कि किसी ने, अगर मैं, मुझे लगा कि युगांडा लिखा, वो युगांडा नहीं होगा। एक्चुअली मैं आपको आंसर दे देती हूँ जो कि यासर ने दिया है, एंड ही सेज दैट इट हैपेंड इन तंजानिया, इगांडू, जी, द क्रैश अकर्ड नियर मसगाली एंड तंजानिया व्हेन अ पैसेंजर ट्रेन विद 1200 पैसेंजर्स रोल्ड बैक, समय ट्रेन चढ़ रही है, शायद होगी ढलान या चढ़ रही है ऊपर, और वो पीछे आने लगती है। वाई? क्योंकि द ब्रेक्स फेल्ड, समझ, ब्रेक का फेलियर होना तो सड़कों पर भी हादसा की वजह होता है, बट दिस हैपेंड इन तंजानिया, ठीक है। एंड ऑल्सो जून 24th इज अ मोन्यूमेंटल डेट इन हिस्ट्री, मोस्ट नोटेबली मार्क्ड बाय सक्सेसफुल 1983 रिटर्न ऑफ द स्पेस शटल चैलेंजर, जी जी, रिटर्न ऑफ द स्पेस शटल चैलेंजर विच कैरीड एस्ट्रोनॉट सैली राइड, 32, द फर्स्ट अमेरिकन वुमन इन स्पेस, शी रिमेन्स द यंगेस्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट टू हैव फ्लोन इनटू स्पेस। अच्छा, आज के दिन, वाह क्या?

कि पता है क्या, आपकी आवाज, ये सहरंगेज संगीत तो है ही, मगर आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में मैं क्या इतना पसंद करती हूँ। कहती जब आपके लिसनर्स, जब श्रोता अपने व्यूज देते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपनी यादें आपके साथ शेयर करते हैं, मैं सुन सुन कर खुश होती हूँ। मेरी 3 घंटे कहाँ गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, परवीन भट्ट। इसलिए अगला गाना आपकी नज़र। और अमीर अली राना ने कहा है कि मैं सुन रहा हूँ कि कल कुछ होने वाला है, कल जुमेरात है। समिन आप ज़रूर गौर से सुनिएगा मैं क्या कहती हूँ, क्योंकि देखें कल फिर आप कहेंगे आप बताकर नहीं गई। समिन अगर कल एहतजाज यहाँ होता है या कुछ होता है, तो अगर हालात बहुत ही ख़राब हैं या डर है या खौफ है, तो शायद मैं ना हूं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि पिछले पिछले रास्ते से और शॉर्टकट्स कर करके मैं यहां पहुंच जाऊं आपके लिए कल जुमेरात के दिन, वरना मैं आपको मैसेज कर दूंगी। जो चंद लिसनर्स हैं उनको मैं बता दूंगी, जिनके कॉन्टैक्ट्स मेरे फ़ोन पर हैं, वरना मैं कोशिश पूरी करूंगी आने की।

0: Kenneth Lusaka has urged voters to prioritize competence, accountability and transparency while electing leaders, saying the quality of leadership chosen by citizens directly shapes governance and development outcomes. He further maintained in a statement that democratic systems must respect the electorate's right to make their own choices. Niger has officially submitted its request to withdraw from the International Criminal Court 9 months after announcing its intent to leave. In September last year, Niger, along with allies Mali and Burkina Faso, which are all under military rule, issued a joint statement saying they will not recognize the ICC's authority, calling it an instrument of neocolonialism repression. The court said it has received an instrument of withdrawal on 18th June, with the withdrawal taking effect 1 year after notification. Most parts of the country expected to experience sunny and dry weather conditions over the next 7 days. However, occasional rainfall is likely in the coast region, the Rift Valley, the Lake Victoria Basin and the highlands east and west of the Rift Valley. The Kenya Meteorological Department has also forecast intermittent cool and cloudy conditions in parts of the highlands, the southern lowlands, the Rift Valley and northern eastern Kenya.
1: East FM News. East FM, Kenya's premier Asian mix. We've got your favorite song for every moment because we love you like that. East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Bemisal Andaz with Parveen Atom.
3: Usme kal nahi lekin jume ke din interview hai. Bemisal Andaz mein 26 tarikh hogi jume ke din. To samne interview hogi Chinmay Mission ke जो तर्जुमान हैं वो आएंगे वो हमारे साथ होंगे क्योंकि चिन्मय मिशन ने बहुत बड़े हनुमान चालीसा हवन का इंतजाम किया है 108 शमष्टि श्री हनुमान चालीसा 108 ये होने वाला है जमीन एसएसटी ग्राउंड्स पे जो लोअर कबीटे रोड में 28 जून को एसएसटी ग्राउंड के मैदान में हवन कुंड कितने होंगे 108 और आवाजें मतलब लोग जो शरीक होंगे हनुमान चालीसा की रेसिटेशन में 3000 क्या बात है 21 ह्यूमन हनुमान चालीसा साइकल्स 21 साइकल्स जो लोग समझते हैं जो मानते हैं इसमें और जो यकीन रखते हैं उनको सबको आना चाहिए और आप सब जो हैं उनको इंटरव्यू 26 को जुमे के दिन जरूर सुननी चाहिए समिन हमें दूसरे जो है ना मजाहिब धर्म होते हैं उनकी पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए बेशक हमने जाना नहीं है लेकिन जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि इस दुनिया में समिन जानकारी है जिसकी कोई इज्जत है
4: जी अलैकुम सलाम आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान वुमन को 113 रन से हरा दिया है आयरलैंड और श्रीलंका वुमन मैच श्रीलंका ने 9 विकेटों से श्रीलंका जीता है और टॉप में इंग्लैंड 6 पॉइंट वेस्ट इंडीज 6 पॉइंट ऑस्ट्रेलिया 8 और इंडिया 4 इंडिया के पास 2 मुकाबला है वो सेमीफाइनल तक पहुंचने की आशा है
3: क्या बात है आशा है सेमीफाइनल में तशरीफ ले जाएगा भारत क्या बात है समझ वैसे ही मेरा सवाल भी आज ऐसा ही है किसी तरह का लेकिन पहले
5: कहते प्रेम से रहो दोस्तों प्रेम से रहो दोस्तों जरा सी बात पे रूठा नहीं करते जरा सी बात पे रूठा नहीं करते पत्ते वही सुंदर दिखते हैं पत्ते वही सुंदर दिखते हैं जो शाख से टूटा नहीं करते जो शाख से टूटा नहीं करते थैंक यू जी
3: वाकई बहुत अच्छे समय 1943 बंगाल में कहत हुआ था समय ये कहत कोई कुदरती कहत नहीं था फेमिन सूखा तो इसके दौरान लाखों कुछ तो कहते हैं 10 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी भूखा रखा गया था उनको कहते हैं कि ये खुद नहीं हुआ था फेमिन और किस कौन थे जिम्मेदार प्रधान विंस्टन चर्चिल थे समिन ब्रिटिश इनको ऑफ कोर्स तारीख हमेशा याद रखेगी कि इन्होंने क्रिएट किया था ये फेमिन समय सारा सामान जो खाने पीने का वेजिटेबल वगैरह तरकारी फल इन्होंने बिल्कुल ट्रांसपोर्ट किया था टू ब्रिटेन, और भारत भूख में तड़पता रह गया। अब एक वीडियो बनाई है एक कलाकार, एक आर्टिस्ट ने वीडियो आर्ट पेश किया और उसको लंदन गैलरी में रखा गया था। उसमें उसने बताया था कि विंस्टन चर्चिल ने क्या किया, लेकिन अब देखें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के 50 अराकीन बैठे, उन्होंने कहा हटाओ इसको, क्योंकि वो विंस्टन चर्चिल का नाम जो आता है। 40 मिनट की वीडियो को समय एक मिनट में हटा दिया गया कि विंस्टन, उसने कहा था आर्टिस्ट ने जिसको टर्नर प्राइज मिल चुका है, बड़ी ब्राइट हैं हेलन कॉमिक, उन्होंने कहा था कि ये जो विंस्टन चर्चिल थे इन्होंने जानबूझकर भारत से सामान जो ज़रूरी था वो अपने ब्रिटेन पहुंचा दिया था और भारतीयों को भूखमरी के लिए छोड़ दिया। और समीन कहते हैं कि उन्होंने भारतीयों को कुएं में धकेला था। बस ये कहना था कि हेलन केमक को के आर्ट को ही हटा दिया गया। वैसे आपने देखा है कि ब्रिटेन में आज़ादी नहीं रही, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी राय बिल्कुल नहीं रही, और गला घोंटा जा रहा है फ्री एक्सप्रेशन का।

0: क्या कमाल की कवाली थी और समय आप देखें, आनंद बख्शी ने इसको लिखा था। कहते हैं कि हम तो ना जहां हुस्न वाले होंगे वहां रहना ही नहीं चाहते, हम यहां हम रहे तो यही गम रहेंगे, इसलिए हम ये हुस्न वालों से दूर जाना चाहते हैं। आनंद बख्शी, व्हाट एन ऑथर, आई मीन अ पोएट। अब सलीम मेहर क्या कहना चाहते हैं?
1: Assalamu alaikum Praveen ji, Salim Meher from London. Respect people who find time in their busy schedule to see you. Love people who never look at their schedule when you need them. Praveen ji, good morning to you and all your lovely Be Misal listeners, and have a lovely day.
0: थैंक यू सलीम मेहर। कहते हैं कि उन लोगों से दूरी रहो जो कहते हैं कि मैं बता क्या, आज मेरा ना बड़ा फुल है शेड्यूल, मैं नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, देखेंगे अगले हफ्ते। कहते हैं उनसे दूर रहिएगा। अब कल्पना ने कहा है कि कल 25th, आई कॉन्ट टॉक अबाउट 25th क्योंकि यासर टॉक्स अबाउट एवरी डे इन हिस्ट्री, सो वो कल बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन कल्पना, थैंक यू। अब यासर ने कहा है कि आपको पता है कि यहाँ नोट प्रिंट करने का कितना खर्च है। कहते 5 साल का ठेका दे दिया गया है एक जर्मन फर्म को जो कि सामने हमारे नोट प्रिंट करते हैं, 14.2 बिलियन शिलिंग की लागत में, क्या बात है। और हर 5 साल ये नोट रिन्यू भी होते हैं, न्यू करेंसी नोट्स हर 5 साल के बाद। तो एक नोट का खर्च आता है करीब 7 शिलिंग। थैंक यू सो मच इंडीड यासर। सर मुझे बताएं ये क्या हुआ है, किसको व्हाट्सएप का निज़ाम दे दिया गया है? ये जो व्हाट्सएप आप रोज़ यूज़ करते हैं ना, किसके हाथ में होगा, कौन है सरबरा जिनको बना दिया गया है इस आलमी कंस्यूमर प्लेटफॉर्म का, सरबरा कौन होंगे? समय मुझे तो हैरत इस बात की है, किस देश के हैं उसकी हैरत नहीं है, इस बात की है कि कॉलेज में इन्होंने डिग्री फिलॉसफी की ली थी। अच्छा बताएं आप हैं कौन? 07011106106।

0: देखते हैं इस फिल्म की जोड़ी थी साधना और संजय खान, ये तो बहुत ही उम्दा जोड़ी बनी होगी। अब देखते हैं कि सबसे पहले मुझे सही जवाब किसने दिया है। यासर, बिल्कुल सही आपने कहा है। समिन, आप मुझे बता रहे हैं कि व्हाट्सएप के ग्लोबल विश्व में सरबरा कौन होंगे, हेड ऑफ व्हाट्सएप। समझ, वो चाहते हैं कि व्हाट्सएप को बिल्कुल बदल कर इस पर पैसे एक दूसरे को भेजने का तरीका, वीडियोस भेजने का तरीका वगैरह कुछ बदला जाए, बेहतर किया जाए। या सर, द आंसर इज करेक्ट। टीना बिल्कुल करेक्ट है, पर आप कुछ उनके बारे में लिख भी सकते हैं। और रसीला ने लिखा है ही इज गोइंग टू बी द ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप, और वो हैं कौन, वो भी लिखा है रसीला ने। थोड़ी देर के बाद पढ़कर सुनाती हूँ। जबीन हिरानी, बहुत अच्छे, कमाल। और आपने कहा है कि ये एक स्टार्टअप क्रेड के बड़े थे, ये सही है कि इन्होंने एक स्टार्टअप शुरू की। समिन, मतलब नई कंपनी शुरू की, छोटी सी थी, कैसे भड़ भड़ के ये यहाँ तक पहुँच गए। मंजुला विश्वकर्मा बिल्कुल करेक्ट। सोनल मोदा, आपने तस्वीर भी भेजी है क्रेड के बानी की, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप। थैंक यू सोनल।
1: भांगड़ा बॉलीवुड हिट्स एंड बैलेड्स टू सिंग अलोंग विद
2: ईस्ट एफएम,
1: केन्यास प्रीमियर
2: एशियन मिक्स। इट्स 11:23.
3: This is the one that we all wait for. The one that transforms and upgrades your living room, kitchen, bedroom, your entire house without breaking the bank. The big annual sale at Tile and Carpet and Tuck. Tiles, flooring, fabrics, furniture, decor, roofing solutions, and many more.
4: With big discounts.
3: There's only one sale. The big annual sale. 15th June to 18th July at the Tile and Carpet and Tuck branches countrywide. Hurry while stocks last.
5: The Tile and Carpet annual sale. It's big!
6: Back to Kenya's premier Asian mix. East FM.
7: East FM. Kenya's premier Asian mix.

0: और समय नैन वक्त पर अश्विन दोषी की लाइन मिल गई है, तो इनसे बात करते हैं। अश्विन, अश्विन ये कौन सी फिल्म थी?
1: ये थी, ये रात फिर आएगी, मिस्ट्री फिल्म थी।
0: अच्छा।
1: पर्दे पे शर्मिला ठाकुर गा रही, साथ में थे विश्वजीत।
0: अच्छा।
1: ये प्रवीण जी, जब आशा भोसले और अभिनय का पीक टाइम था, उस टाइम का ये गीत है।
0: इसलिए ये फिल्म के गाने और भी बड़े अच्छे अच्छे हैं।
1: रियली फ्रॉम प्रवीण जी, फ्रॉम 1958 टू 1973, जब भी जो भी जब भी ओपी नायर और आशा भोसले ने कॉम्बिनेशन किया, बेस्ट हुआ था।
0: वाह क्या बात है।
1: लेकिन आशा भोसले कबूल नहीं करती थी।
0: जी कहती थी कि उनकी वजह से।
1: या वो यू नो शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ट्रूथ,
0: अदरवाइज अश्विन दोषी वो अपनी बड़ी बहन के शेडो से निकल ना पाती।
1: यस यस एंड ये शी टोल्ड Opinion gave her a different path, different path
0: Bilkul.
1: To come out of that shadow,
0: so
1: and
0: to be
1: Asha Bhosle as an independent playback singer.
0: Singer, what success, Mataram?
1: Yes,
0: God.
1: Yeah. Oh, but वो नहीं,
0: नहीं बिल्कुल नहीं है।
1: मन में तो मानती होगी, जी आई टेल यू, मन में तो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मन में तो मानती होगी, लेकिन मुख से नहीं बोलते
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: बट इट्स अ ट्रेजेडी एनीवे, वी बेनिफिटेड ऑफ हर द कॉम्बिनेशन एंड वी अप्रिशिएट दिस म्यूजिक।
0: तो अश्विन डिड दिस टीम लास्ट फॉर एवर, के उनकी मौत बीच में हो गई या उससे पहले छोड़ दिया था?
1: ना छोड़ दिया था। दे स्टेड टुगेदर फ्रॉम 1958 टू 1973,
0: राइट?
1: फिर आशा भोसले ने छोड़ दिया एंड देन शी चोज आर डी बर्मन एंड मैरिड हिम।
0: अच्छा अच्छा, इट वाज अ क्लेवर मूव
1: ऑफ कोर्स, एंड ओपिनियन का खत्म हो गया सब कुछ,
0: राइट? ओ माय गॉड,
1: सोलली डिपेंडेंट ऑन हर, टोटली
0: देखा ना, बिकॉज ही वाउंड हिज सक्सेस राउंड वन पर्सन
1: दैट इज वेरी
0: दैट इज सो रॉन्ग
1: या वो बोलते थे बाद में कि मैंने किसी को सुना नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं,
0: इसलिए
1: ये मेरी परिस्थिति आ गई है।
0: आ गई है, बिल्कुल सही बात।
1: ही न्यू दैट गीता दत्त एंड शफजाद बेगम कंट्रीब्यूटेड टू हर हिज सक्सेस, बट ये आशा भोसले के चक्कर में वो उनको भूल गए।
0: हाँ राइट राइट एग्जैक्ट
1: बात हुई थी प्रसून जी।
0: थैंक यू अश्विन, आप तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। थैंक यू। और समय ये बात है, आपके लिए कोई क्या भी करे ना, उस बंदे ने, आपने किसी के लिए भी कुछ किया ना, उस बंदे ने आपको जरूर डिसीव करना है। चिराग पटेल बिल्कुल सही जवाब है आपका, और आशा भिमानी करेक्ट आंसर है, बिल्कुल। रितु गुप्ता ये भी बिल्कुल सही है जवाब। दीपक वडगामा, तस्वीर देख ली है मैंने, और समय इस तस्वीर को देखकर पता चलता है कि ही इज ब्रिलियंट, शक्ल से ही कि समबडी वुड हैव डन फिलोसफी। वो कहते हैं कि मैंने पता है क्यों फिलोसफी की है, ये जो आज का आंसर है, कहते हैं क्योंकि ताकि मुझे टाइम मिल जाए, सुबह सुबह क्लासेस होती थी फिलॉसफी की, और फिर बाकी का दिन मैं फारिग रहता था, मैं बिजनेस में अपने वालदेन का या परिवार का वो चलाना चाहता था। क्या बात है। और मनहर की बात थोड़ी देर के बाद, पहले रसीला आपने ये रात फिर ना आएगी का और आंसर भी करेक्ट दिया है। समय आंसर है कुणाल शाह, Kunal Shah, global head of WhatsApp. He will be taking over from Will Cathcart. Shah is known for his unconventional path, having earned a Bachelor of Arts in Philosophy from Mumbai's Wilson College se. Very good, ये कहा है रसिला ने, बहुत ही अच्छी बात है. और जतिंदर आपको कवाली पसंद आई, वो आनंद बख्शी वाली, किसी दिन फिर भी ज़रूर करूँगी. और अगले सवाल तक ये एक तोहफा कबूल

0: एक बार फिर आशा का कमाल सामिन वाकई कमाल कर दिया. बहुत मुश्किल है कहना कि ना क्या ओपी नैयर ना होते तो क्या ये इस उरूज पर ना पहुंचती. मुश्किल है. खैर अभी एक आंसर जो हमने नहीं बताया था वो दिया था किसने, आइए सुनते हैं इनकी आवाज.
1: हेलो प्रवीण जी, थोड़ा क्वेश्चन आंसर हैगा कुणाल शाह, उन्होंने हेड बना हूं. थैंक यू जी.
0: बिल्कुल सही, कुणाल शाह. कोई एक और जीनियस आ गया है आगे. और प्रवीण जी प्रिय से कोई प्लीज ओनली इफ यू कैन मेरे पिया से कोई. ओके रसीला, वो तो मुश्किल नहीं है, वो मैं कर लेती हूँ आपके लिए. पर आपको हमें कुछ बताना होगा, मतलब जवाब देना होगा. किसका समय जवाब आपने इस सवाल का देना है. $1.8 billion का कारोबार है इंडिया में. $1.8 billion कारोबार इंडिया में इस चीज़ का जो खाई जाती है, खाने की चीज़ है. ठीक है. और जो समय फटाफट तैयार हो जाती है, यहाँ निकाली पैकेट से और यहाँ ये तैयार हो गई. और जवान तबका जो है भारत का, द यूथ, द मिलेनियल्स नहीं द जेन जीज भी इसके दीवाने हैं. हालांकि इस खाने की चीज़ को बैन भी किया गया था, एक वक्त आया था इसको बैन किया गया था चंद साल पहले. क्यों? हद से ज़्यादा इसमें लेड पाया गया. ठीक है. इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG भी थी, जो कि नहीं, इस हद तक, इस मकदार तक नहीं होनी चाहिए. फूड सेफ्टी को तशवीश है, लेकिन मिलेनियंस इसे खा खा कर बहुत खुश हैं. कहते हैं वी ग्रू अप विद दिस. अच्छा, इसकी स्पाइसी वर्जन तो कहते हैं मज़ेदार है. क्या करें समिन, कहते हैं कि देखो हमें अपने माँ बाप के साथ हम नहीं रह रहे, हम दूसरे शहरों में आए हुए हैं काम के लिए, और हम काम से थके हुए आते हैं, तो क्या पूरी मील तैयार करेंगे? किसके पास इतना वक्त है? ये चीज़ इतनी अच्छी है, इतनी टेस्टी बन जाती है, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. कहते ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है. क्या है ये बताएंगे? 07011106106.
2: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: East FM,
2: celebrating your favorite occasion. East FM,
3: Kenya's premier Asian mix.
2: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: Talent Aris Advisory is hiring debt collection agents on behalf of its clients. A minimum of a diploma in business, communication, customer service, finance, credit management, or a related field, and at least 1 year of experience in debt collection, call center, customer service, sales, credit control, or a related role required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Podplay Agency is looking for a capable and experienced digital marketer. Degree or diploma in a relevant field and 3 to 4 years of experience in digital marketing is required. Experience in the betting industry is an added advantage. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
6: Kenya's premier Asian mix means always playing the very best.
3: East FM.
6: East FM. East FM.

0: चलिए जानते हैं अश्विन दोषी से। अच्छा अश्विन, ये कोई राज कपूर की फिल्म थी?
1: नहीं, ये पढ़े थे राजेंद्र कुमार जा रहे।
0: अच्छा।
1: फिल्म थी सुपर डुपर ससुराल।
0: अच्छा ससुराल, क्या बात है।
1: यस।
0: कौन थी हीरोइन?
1: हीरोइन डी सरोजा देवी, साउथ इंडियन।
0: ओके,
1: तो ये साउथ इंडियन प्रोडक्शन था पवन जी।
0: एंड येट आई मीन ऑफ कोर्स हमारे यहाँ उनकी तो बहुत स्टैंडर्ड ही हाई है, तो इट शुड हैव सक्सीडेड। अच्छा
1: यस, फिल्म बहुत पैसे बनाए, बहुत रियली सक्सेसफुल हुई पवन जी। उनका जो मोस्ट पॉपुलर गाना था, हाँ? तेरी प्यारी प्यारी सूरत
0: को किसी की नजर न,
1: वो मोहम्मद रफी ने गाया था। ये गाना मुकेश ने गाया था, या लेकिन इट वाज अ फैमिली स्टोरी एंड सबको बहुत पसंद आई।
0: हाँ, क्योंकि बेचारी बहू ने कितनी कुर्बानियां दी होंगी, फिर ही तो पसंद आए।
1: बहू की कुर्बानी नहीं थी,
0: ससुर की।
1: ससुर बहुत ललिता पवार थी।
0: ओ माय गॉड,
1: ललिता क्या हो सकता है,
0: क्या हो सकता, क्या हुआ होगा, तो बम फटे होंगे जी।
1: तो ऐसी स्टोरी थी और पिक्चर कमाल कर दिया और ससुराल वाज अ सक्सेस स्टोरी पर जी।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अश्विन आपने देखा कभी आजकल ससुराल की कोई फिल्म ही नहीं बनती, जरूरत ही नहीं पड़ती है ना,
1: अभी सब चेंज हो गया।
0: चेंज हो गया, मुझे लगता है ससुराल भी खत्म हो जाए।
1: ससुराल और मेका सब,
0: मेका सब
1: सब एक हो गए,
0: बिल्कुल इन द वेल।
1: अभी ये वो बात खत्म हो गई,
0: खत्म हो रही है। अश्विन थैंक यू, थैंक यू। अच्छा समिन, अश्विन दोषी के बाद रोशन कान जी आप बहुत एंजॉय करिए। मनर पटेल का मैंने कुछ और भी सुनाना था आपको।
2: हेलो नमस्कार, मनर पटेल की सुमो केम छो ऑल लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामी नारायण, जय जीरेंद्र, ओम शांति। एक भाई को शादी करना था तो इंडिया में उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दिया, उसका जो होता है ना मैरिज के लिए वो डाल दिया। तो दूसरे दिन उसको 100 ऊपर ईमेल आ गया और सब में लिखा था मेरे वाली ले जा, मेरे वाली ले जा, मेरे वाली ले जा। थैंक यू मनर पटेल की सुमो।
0: अच्छा पता चल गया।
2: मनर पटेल, उसका नाम है मैगी, मैंगी। थैंक यू।
0: अच्छा ये किसका नाम मैगी कह रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरे वाली ले जा? नहीं नहीं, वो नहीं, कुछ और ही है। ओके, और ये क्या है, बिल्कुल रमेश हरिया करेक्ट आंसर है आपका। और सबसे पहले समन जिन्होंने आंसर दिया वो कृष्ण सर्वे थे, वो कहते हैं कि ये ना गुटका है लेकिन फिर उन्होंने जल्द अपना ठीक कर लिया जवाब और सही था। और कल्पना आपने करेक्ट आंसर दिया है, और सोनल मोदा जी बिल्कुल ये भी करेक्ट है। साथ आए हैं, अपना नाम नहीं बताती ये कौन है, तेजल। ओके तेजल, आई थिंक आई नो दिस तेजल, मैं श्योर नहीं हूँ कि इनको मैं जानती हूँ कि नहीं, बट गुड। और करेक्ट आंसर नीला शेत, बिल्कुल सही जवाब है। रितु करेक्ट आंसर है, और यहाँ कौन है, मिसेस गौतमा, बिल्कुल सही जवाब है मिसेस गौतमा। और एक और जवाब भी ले लेते हैं, और वो है किसका, पूनम। पूनम बिल्कुल सही है, क्योंकि पूनम भी कोई यंग लिसनर हैं तो आपकी जनरेशन इस चीज़ को बहुत पसंद करती है। मिस्टर मेहता फ्रॉम एम्बू सही जवाब। चिराग पटेल करेक्ट आंसर फ्रॉम काराटीना। मंजुला विश्वकर्मा ने भी सही जवाब दिया है। और

0: Buttiest FM, Kenya's premier Asian mix.
1: समय बात ये है कि मैंने आपको कुछ नाम देने हैं और आपको पूछना है, लेकिन इससे पहले आए हैं अजय पाल, उनकी बात सुनते हैं, फिर मैं आपको नाम देती हूँ। आइए।
2: हेलो, सलाम परवीन जी। परवीन जी, ऐसा कीजिए, प्याज काटिए, थोड़ा अदरक लहसुन डालिए और कैप्सिकम वगैरह कुछ सब्जियाँ, कैबेज वगैरह डाल के उन्हें भूनिए और उबले हुए नूडल्स उसमें डाल दीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया परवीन जी, थैंक यू।
1: हाँ, लेकिन अजय पाल, वो बात ढोकला की भी हो रही थी ना, ये तो इंस्टेंट नूडल्स तो बिल्कुल सही आपने कहा है, बहुत मिनटों में बन जाती हैं। खैर सामिन, वो जो सवाल है वो है डेविड कैमरन, ओके, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, लिज ट्रस, कीर स्टामर। समिन, इन्होंने क्या किया कि ये सब अब एक ही कैटेगरी में आ गए हैं? इन सब ने क्या किया या इन सब को क्या करना पड़ा? डेविड कैमरन, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, लिज ट्रस और अब कीर स्टामर, क्या किया है, क्या करना पड़ा था? ठीक है, 0701 106 106 पे बताएं।

0: समय सवाल आपको सही तरह से सुनना चाहिए था. मैंने कहा इन सब ने क्या किया था. आप सब कह रहे हैं ये सब समझ लीजिए क्या थे, लीडर थे. मैं ये नहीं पूछ रही कि वो कौन थे, मैंने कहा उन्होंने किया क्या था. सो प्रफुल्ल पटेल और जैनुल मोहम्मद, आपको अपने जवाब बदलने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स दे वर दीज, वो तो पता है हमें कि वो कौन थे, किया क्या था. कृष्ण सरोय मिसेस गौतमा, बिल्कुल सही जवाब. और दिनेश पोपट, ऑफकोर्स दिनेश पोपट भी. नमस्ते परवीन जी, इट्स बीन एन ऑसम प्ले लिस्ट, थैंक यू. दीज वर डैश डैश डैश, बिल्कुल आपने कहा है दीज वर, ये लोग कौन थे. ओके okay. प्रसाद कहा है किया क्या था. दिनेश पोपट फ्रॉम सिड कप कैंट, करेक्ट. और जगदीप नांद्रा ने भी कॉल किया है, नाइनो उनका भी आंसर सही होगा. रितु गुप्ता आपने कहा है, नहीं वो मैसेज मेरे हाल अभी टाइप करें, लेकिन समय करना क्या पड़ा था इनको. और कल्पना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दे ऑल हैड टू डू दिस दिस दिस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बिल्कुल अपनी पार्टी में ही उन्होंने साथ खो दिया.
1: आत्मा की ये

0: तो क्या ये राज कपूर की थी कि नहीं?
1: आपको आपको ताजुब होएगा कि ये भक्ति प्रधान फिल्म थी।
0: ओह रियली?
1: रिलीजियस? यस।
0: तो ये जरा सामने तो आओ, भगवान को कह रहे हैं?
1: यस यस।
0: क्या
1: ये थी जन्म जन्म के फेरे जिसमें निरूपा रॉय और मनोहर देसाई वर द प्रिंसिपल स्टार।
0: ओह गॉड, हाउ डिफरेंट।
1: और प्रवीण जी, और आपको ताजुब होएगा कि ये बिना का गीतमाला में बहुत प्रोमिनेंट हुआ।
0: ये जरा सामने तो आओ।
1: यस,
0: क्या बात है।
1: 1957-1958 में।
0: या, ओह गॉड, इमेजिन। इवन टुडे आई वाज एंजॉयिंग इट, लव्ड
1: इट। यस म्यूजिक था एस एन त्रिपाठी, ही वाज अ सेकंड ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। एस एन त्रिपाठी इसी फिल्म में आते थे और गीत सभी लिखे थे भरत व्यास ने, और निरूपा रॉय और मनोहर देसाई की एक्टिंग रियली
0: कमाल की
1: है, कमाल की थी, और पिक्चर हिट हुई।
0: तो ये यंग थे तब?
1: यस यस, दे मस्ट बी 25-30
0: years old. Right, right.
1: Oh my God. Yeah. I just wanted to tell you कि ये इनका इनकी history ये है.
0: History ये है.
1: आपको आपको लगेगा कि ये कोई romantic
0: है पर, लेकिन नहीं.
1: नहीं. नहीं, ये भक्ति प्रधान movie थी.
0: अच्छी होगी और अच्छा है कि उन्होंने इस तरह का गाना भी इसमें. बहुत खूब. थैंक यू अश्विन. और अश्विन दोषी के बाद चलते हैं किसके पास? मंजुला विश्वकर्मा. लेकिन सबसे पहले जबीन हिरानी, आपने जो बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया है. टीना ने भी बता दिया, सही जवाब दिया है. और रितु ये नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको करेक्ट कर लें. मंजुला विश्वकर्मा क्या कहती हैं वो थोड़ी देर के बाद. लेकिन पहले नीला शेट, ऑल ऑफ देम वर दीज फॉर सच अ सच, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भी. और धीरूभाई लखानी, शुक्रिया आपका. चलिए एक गाना सुनते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ मंजुला विश्वकर्मा ने क्या कहा है. और ये है गुलाम अली की आवाज़.

0: और अश्विन दोषी, मैं सुबह से राज कपूर करती आ रही हूँ, अब ये मत कहिएगा कि ये राज कपूर की फिल्म
1: है। ये राज कपूर है।
0: अच्छा, ये राज कपूर ही थे ना। ओके, बताइएगा।
1: ये अच्छी फिल्म चलिया।
0: चलिया, अच्छा।
1: ये राज कपूर एंड नूतन एंड रहमान।
0: ट्रायंगल, ऑफ कोर्स
1: ट्रायंगल था। ये पाकिस्तान की स्टोरी थी परिण जी।
0: अच्छा।
1: Nutan and Rehman were married and then they get separated.
0: Uh-huh.
1: And Raj Kapoor gives shelter to Nutan.
0: Uh-huh.
1: And he falls in love and doesn't know that Nutan is already married. And it's a good story.
0: Story, acha, acha.
1: Yeah. Film hit hui, Paranji.
0: Really?
1: Yes.
0: Chaliya.
1: Unka karan, yeah. Unka karan ye Raj Kapoor, Nutan aur Rehman ki tino ki acting.
0: बहुत खूब।
1: और कल्याण जी, आनंद जी का म्यूजिक और कमल जलालाबाद का।
0: वाह, अच्छा।
1: तो उनका जो बहुत पॉपुलर था मुकेश, वो चलिया मेरा नाम।
0: हाँ जी, चलिया मेरा नाम।
1: वो बहुत उस टाइम में
0: पॉपुलर हुआ
1: था। और सब हमने बहुत बार सुना है। हाँ, अभी भी सुन रहे हैं।
0: सुन रहे हैं, exactly.
1: गाने गाने से भी मास्टरपीस थे
0: ये। राज कपूर की फिल्मों का था कि वो म्यूजिक पर बहुत करते थे फोकस।
1: उनकी खुद की फिल्म नहीं थी परिण जी।
0: अच्छा, ओके।
1: या सुभाष देसाई।
0: सुभाष देसाई, ओके।
1: क्या वो डायरेक्टर हीरो फिल्म ने कमाल कर दिया।
0: कमाल, बहुत ही अच्छे। क्या जमाना था, सुनहरा दौर था फिल्मों का, संगीत का, अदाकारों का।
1: Exactly.
0: बहुत अच्छे। ओके,
1: याद है परवीन जी ये सब। ये फिल्म इज नाउ मोर देन 65 इयर्स
0: ओल्ड।
1: इट वाज रिलीज इन 1960
0: ऑफ कोर्स।
1: तो अभी देखो आप, अभी
0: कितना समय गुजर गया।
1: गुजर गया,
0: क्रिएटिविटी खत्म। बिल्कुल। थैंक यू अश्विन। और समिन, जैसे के कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव हो बंदा सम, वो जो तख्लीक करता ना, वो फिर सदियों रहती है। बात बहुत ही अच्छे।
2: इन सब को अपना टर्म पूरा होने के पहले ही रिजाइन करना पड़ा था।
0: ये क्या कहकर गई हैं मंजुला विश्वकर्मा?
2: इन सब को अपना टर्म पूरा होने के पहले ही रिजाइन करना पड़ा था।
0: बिल्कुल, ये आंसर था। ये सब रिजाइन करने पर मजबूर हुए। प्रफुल्ल पटेल, बिल्कुल सही। अरफादीन, करेक्ट आंसर। और अब देखते हैं कि टीना ने भी कहा था कि दे ऑल रिजाइंड फ्रॉम देयर पोस्ट एज प्राइम मिनिस्टर। और मनहर पटेल,
3: हेलो मनहर, किसुमु से। एक लड़का उसके फादर के साथ शॉपिंग मॉल में जाता है, फिर उसका फादर को डिमांड करता है कि मेरे को शैम्पू चाहिए, शैम्पू चाहिए। तो बाप ने गुस्से में आके, उसके उधर नाई का दुकान था तो वहाँ उसका सर मुंडा दिया। फिर बोलता है, ले अभी शैम्पू लेके क्या करेगा। तो घर पे आया तो उसने कंप्लेंट की फादर की कि मैंने डैडी से शैम्पू मांगा तो मेरा हेयर मुंडन कर दिया। तो उसकी माँ बोली, अच्छा है कि सर मुंडवा दिया, तूने टूथपेस्ट मांगी होती तो क्या होता, तेरा एक भी दांत नहीं रहता। थैंक यू मनहर पटेल की सोमो।
0: बात है वाकई, शुक्र है कि तूने टूथपेस्ट नहीं मांगी। मनहर, दैट वाज अ गुड जोक। और रीतू नो, और धीरूभाई लखानी, बहुत अच्छे। रसीला, द बेस्ट सॉन्ग, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के। बिल्कुल रसीला, आई एग्री विद यू। समिन, ये सभी जो थे ना, मैंने आपको नाम दिए, डेविड कैमरन, टेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, लीज ट्रस, और अब कीर स्टार्मर, ये सब रिजाइन, इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए थे। और जैसे कि कई लिसनर्स ने मुझे कहा कि ये इसलिए कि उनकी पार्टी के अंदर से बगावत हुई, समझने, कहते हैं कि डिसिप्लिन नहीं है इन पार्टियों में, क्या बार बार होता है। ओके, सब ने रिज़ाइन किया था, भरत गंगाराम फ्रॉम लंदन, जी जी, लेकिन क्यों ये भी बात है, पर मुझे बताएं इन सब में 20 महीने किसने 20 महीने गुजारे थे इस ओहदे में, कौन 20 महीने के बाद उनको भी जाना पड़ा, कौन थे वो,

0: और सबसे पहले जवाब वो भी सही किसने दिया कृष्ण सरोय बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और आपने ये भी कहा है कि अभी अभी कमर जलालाबादी का जिक्र हुआ और सर मैं आज तक कमर जलालाबादी को मुसलमान समझती रही वो कहते हैं उनका नाम ओम प्रकाश भंडारी था हाँ ओके ओम प्रकाश भंडारी थैंक यू कृष्ण साथ आई हैं मंजुला गोरसिया जवाब गलत जबीन हिरानी जवाब गलत और भरत गंगाराम जवाब गलत भरत गंगाराम की मैंने रिपोर्ट करनी है लंदन में रहते हुए इन्होंने सही जवाब मंजुला विश्वकर्मा गलत रितु गुप्ता करेक्ट और कल्पना करेक्ट आंसर है आपका और यहाँ पर ये भी गलत है मिस्टर मेहता नहीं समन सब ने कीर स्टामर का नाम लिया है गलत
1: A few weeks ago, we sold 100 tickets for 100 bob. Told people nothing. They trusted us anyway. Turns out, they were right too. On Saturday, July 25th, experience the Agave Affair. Curated tasting, great music and great company. All happening at KICC. One night, bold flavors, unforgettable memories. Don't watch it on everyone's stories. Be in it. Alibad tickets are now live at ticketyetu.com. The Agave Affair.

और मोनिका गोकुलदास, यू आर एंजॉइंग, तेरी राह में खड़े हैं दिल थाम के, क्या बात है। सब तमाम मीना कुमारी की जो फिल्में थी इन्होंने देखी हैं, उनकी फैन है मोनिका, गुड दैट यू ट्यून्ड इन टुडे। और समीन, जो आंसर था वो जबीन हिरानी ने दिया है, पहले तो कृष्ण सर्वे, कल्पना, रितु गुप्ता, बाकी सब ने कीर स्टामर कहा। स्टामर ने अभी अभी अनाउंस किया है कि वो पद से हट जाएंगे, मतलब कि जो हुक्मरान पार्टी है उसके अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो उन्होंने तो ये कह दिया है। जबीन हिरानी करेक्ट आंसर, समीन करेक्ट आंसर था, और आपने बहुत इन्जॉय किया गुलाम अली की आवाज़ में वो गज़ल को, ग्रेट। समीन आंसर था ऋषि सुनक, उन्होंने 20 माह काटे थे, उनसे ज़्यादा भी होकर गए हैं, जैसे कि टरीजा मे या मेरे ख्याल है कैमरन, वो ज़्यादा भी होकर गए हैं। पर समीन देखें, छोटी मतलब कि अगर इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी में आप कई कीड़े निकाल सकते हैं और फिर पार्टी में बगावत शुरू हो जाती है। हर कोई कोशिश करता है कि मैं बनूंगा अगला, मैं बनूंगा अगला प्रधान। और उस्ताद गुलाम अली पंजाब बॉर्न 1940s, अ पाकिस्तानी गजल सिंगर ऑफ पटियाला घराना, उस्ताद गुलाम अली, ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द लीडिंग गजल सिंगर्स ऑफ हिज एरा, हु हैज़ आल्सो बीन अ प्रोमिनेंट प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड। ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ बड़े गुलाम अली खान। Ali was also trained by Bade Ghulam Ali's younger brothers Barkat Ali Khan and Mubarak Ali Khan. Rasila, bahut achhi info aapne di hai. I am so happy, you are really working hard.

0: So I got a message here right now, and it is sometimes I feel very sad to hear from human beings that they have a very small thinking. Inki jo soch hai na, aisa lagta hai inke dimag se shuru hoke dimag mein hi khatam ho jati hai. They don't want to think out of the box. So earlier when I mentioned about the interview and I said that it is to do with men's mental health awareness and she's a hypnotherapist, I actually got a message right now. I don't want to take a name because I have full respect for my listeners and someone who follows me on social saying, oh, how is that interconnected? We men, we know how to take things lightly and handle it in our own way. You women, I feel sometimes are powerless. You don't know how to handle things when you get overwhelmed. Even to say something like that, I feel just shows the capacity you have to handle things and what kind of breeding or breeding I would use the word for you, not even you know, your how you were raised, but even to differentiate between men and women like this is absolutely ridiculous. But it's okay. The question today is not that today, and it is to do with things that you want to say loud, but sometimes you feel ki samne wala aise hi samajh jaye to achhi baat hai. Okay, and Paresh, as always, the love that you have for Ajay Devgan, you're saying many times you want to ask Kajol ki what nasha that you're doing, you decided to marry Ajay Devgan. ये आपकी जो दुनिया कई सालों से चलती आ रही है दुश्मनी अजय देवगन के साथ. I totally feel you. Okay. I've got another message here saying, I wish they knew I never stopped caring. I just stopped reaching out. And this goes for a few of my family members and friends who I was very close to at one time. I understand where you're coming from. I've got another message here saying that, I wish someone knew that as a human being, we are also struggling. Even though I smile all the time, there is a point where the struggle is real and I cannot deal with it anymore. But that's exactly what we talk about, is speaking it out, you know, sharing with your close ones. And if you feel someone doesn't understand that point of your life, then you speak to a professional. I go to my therapist at least once a month, and trust me, it really, really helps me, because I have some close friends who I share everything with me. I have my family, I have my daughter, everyone. But end of the day, what you can speak to a professional, because they're not biased, they're not going to judge you, they're not give you one side you know, whatever stories or opinions, they will be neutral and help you find a way, navigate through your issues. That is very, very important. Thank you for sharing your wonderful you know, statements or something that you want to speak about but you wish someone just knew without hearing. So you know what, all the best. And sometimes I feel speaking it out is very, very important. Not sometimes, but most of the times. All right. Thank you for your wonderful company. We are getting into the next hour of the show. Keep it East FM.
1: East FM. With news from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News, presented by Parveen Adam.
2: ईस्ट एफएम पे बुध की खबरें. पहले खबरों की सुर्खियां. 2027 चुनाव के लिए नया मंसूबा जारी. ईस्ट अफ्रीका में मानव अधिकारों के उल्लंघन पे माथा कारुआ का बयान. ईरान की मुखालफत अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के बयान पर. और यूनाइटेड किंगडम में रेल गाड़ियों के निजाम पे मौसम का असर. खबरें तफसील से. इलेक्टोरल कमीशन ने स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर 2024-29 जारी किया है, जिसके तहत जनता का भरोसा पाएगी सरकार. शफाफ और इंसाफ पर मबनी मतदान करवाना हुकूमत का फर्ज है. काउंटीज की सरहदों में तरमीम की जाएगी ताकि हर काउंटी की नुमाइंदगी हो. चुनावी अमल मुल्क की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाता है, यानी सॉवरेंटी को. माथा कारुआ ने खबरदार किया है, लोकतंत्र खतरे में है. पूर्वी अफ्रीका में डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग नजर आती है. कारुआ को युगांडा दाखिल होने से रोका गया अपने मुवक्किल की दिफा करने से. आपका कहना था कि एक्टिविस्ट और मुखालफी नेताओं को युगांडा में जकड़ा जा रहा है, उनके अधिकार पामाल हो रहे हैं. आलमी खबरें. ईरान ने जेडी वैंस के बयान की नफी की है कि न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को ईरानी तनसीबात का मुआयना करने दिया जाएगा. इस पे कोई समझौता नहीं हुआ, ये कहना है ईरानी विदेश मंत्रालय का. अमेरिका ने प्रतिबंध हटा दिए हैं, अब ईरान आलमी बाजार में तेल बेच रहा है. यूनाइटेड किंगडम के सबसे बड़े ट्रेन ऑपरेटर ने खबरदार किया है बुध और वीरवार को रेल सफर न करें शहरी इसलिए कि तापमान खतरनाक हद तक ऊंचा गया है एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी कर दी गई है स्कॉटलैंड और आयरलैंड में तारीख में शदीद गर्मी का रिकॉर्ड बना है 33.7 सेल्सियस इंग्लैंड और वेल्स में 312 स्कूल बंद कर दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर फलस्तीनी बच्चों की जेनोसाइड कर रहा है यह जंगी जराइम के दायरे में आता है जो गजा पट्टी में किए गए हैं लाखों पैलेस्टीनियन बच्चों की जान ली गई है उन्हें माजूर कर दिया गया हालांकि अक्टूबर माह जंग बंदी हुई थी पैलेस्टाइन में नस्ल कुशी जारी है ताकि रियासत का नाम ना रहे पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान की इंसानी हुकूक एक्टिविस्ट महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है 2024 की रैली में एक पाकिस्तानी फौजी की मौत हुई जिसका कसूरवार महरंग को ठहराया गया इसलिए कि महरंग ने भीड़ को उकसाया और शब्बीर अहमद पे हमला आवर हो गए लोग मार मार कर गिरा दिया अदालत ने रैली जहां महरंग ने भड़कीली तकरीर की को भी गैर कानूनी करार दिया ये थी आज की खबरें मैं हूं परवीन आदम
1: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
0: All right, so this is the second hour of the show. I have Oi Amma coming up featuring Rasha Tadani. I think Raveena Tandon ki beti has a bright future. She's very pretty like her mom, very talented, a good dancer as well. I just feel she needs to now, you know, really focus and pick up good films. Not just be there for the sake of being there in the film as an heroine. अगर वो अच्छे सब्जेक्ट्स करेंगी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेंगी एंड नॉट रश इनटू इट देन शी हैज़ अ गुड फ्यूचर शी इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड वेरी प्रिटी एज वेल जस्ट लाइक अ मॉमी

0: कौन से दो गाने हैं ये दैट आई एम लुकिंग फॉर, एंड इन केस यू नो द करेक्ट आंसर यू कैन सेंड मी अ मैसेज ऑन 0701106106. बहुत सारे लोगों ने एक पहले दूसरे गाने का जवाब तो बिल्कुल सही दिया है, बट द फर्स्ट वन नॉट मैनी पीपल हैव गॉट इट. तो आपको मैं क्लू दे देता हूँ अबाउट द फर्स्ट सॉन्ग. बहुत ही अच्छा गाना है एंड आई थिंक अगर आपको क्लू दी थी यू विल बी एबल टू गेस वेरी वेरी ईजिली. सो कौन सा गाना है ये मैं आपको बताता हूँ. इट्स टेकन ऑफ द मूवी चलते चलते स्टारिंग रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान. फेमस सॉन्ग ऑफ द मूवी चलते चलते स्टारिंग रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान.
1: A few weeks ago, we sold 100 tickets for 100 bob. Told people nothing. They trusted us anyway. Turns out, they were right too. Because tequila deserves more than a shot glass. On Saturday, July 25th, experience the Agave Affair, Nairobi's first premium tequila celebration. A premium variety of tequila brands, curated tasting, great music, and great company. All happening at KICC. One night, bold flavors, unforgettable memories. Don't watch it on everyone's stories. Be in it. Alibad tickets are now live at ticketyetu.com. The Agave Affair. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18.
2: All the great songs that make your day.